दिल तड़पता है मेरा सीने में, हाय पहुँचूंगा कब मदीने में। कल्ब जिसका न हो मदीने में, उसका जीना है कोई जीने में।